साधना करो। योग दे अठ अंग ने, उन्हां विचों सब तो पहला है प्राणायाम, श्वासां दी प्रक्रिया ते नियंत्रण करना। वह श्वासां नूं वेखदे आ वी श्वास जा रहे ने, श्वास आ रहे ने। श्वासां दी साधना नूं करदिआं करदिआं वह फिर श्वासां नूं रोकदे आ, जिहनूं वह कहिंदे आ पूरक, रेचक, पूरक ते कुंभक। ये तीन प्रकार दीआं प्रक्रियावां ने। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच इहदा जिक्र आया, रेचक दा, पूरक दा ते कुंभक दा। तीन नाड़ियां ने, ईड़ा, पिंगला और सुखमना, तीन बसां इक ठाएं। ईड़ा द्वारा श्वासां नूं खिचणा, उहनूं कहिंदे आ रेचक। फिर सुषमना द्वारा श्वासां नूं रोक लैणा, उहनूं कहिंदे ने कुंभक। फिर उन्हूं त्याग देना। इदा रेचक, पूरक ते कुंभक की प्रक्रिया नाल श्वासां नूं रोकण की साधना करदे। तुसीं भी कदे अनुभव करके वेखियो भी 25 सकिंट लई, 30 सकिंट लई, 40-50 सकिंट वास्ते भी साह रोक सकदे आ, कई अभ्यास है। जे तुसीं 30 सकिंट लई भी श्वास अपने रोक लो अंदर छाती च भर के, ते मन रुक जांदा। तुसीं इह प्रैक्टिकल करके वेख लैणा। जे तुसी 30 सकिंट जां 40 सकिंट लई श्वास रोक लो ते मन जिहड़ा उह भी रुक जांदा, क्योंकि योग शास्त्र दा इह कहना भी जदों श्वास चलदे है, श्वासां दे चलण नाल मन चलदा। जदों श्वास रोक लो उदों मन भी रुक जांदा। उह तां ही फिर समाधि विच स्थित हो के की करदे सी, कई कई घंटियां तक श्वास रोकी रखते सी, दसम द्वार च श्वास चढ़ा लेंदे सी, पर उहदे नाल भी उहनां दा मन काबू विच नहीं सी आउंदा। महाराज श्री गुरु अर्जन देव साहब पंजवें पातशाह जी ने बड़े अमृत बचन फुरमान कीते राग सोरठ विच। गुरदेव दे महावाक हन, पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल भुयंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अध

सो तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई तिहाय रे अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण तिहाई है जिह जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दयावे ताए सब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी दार दा ध्यान करके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहान साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया वन के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अमडिठ कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदके सवासा संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया जी का ध्यान करके बोलना जी प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रछिया रियायत देख तेग फतेह ब्रिद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहस दान विवेक दान विसाह दान प्रसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी सिखां दा मान नी वा मत उची मत पद दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब समूह गुरधामा दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नू बख्शो हे निमाणिया दे मान निताणिया दे तान नियोटिया दी ओढ़ ने आसरिया दे आसरा धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती आप जी ने कृपा रहमत कीती है आप जी दी पावन हजूरी में शाम दे सुंदर दीवान सजे हन सजे हुए दीवाना विच सच्चे पातशाह जी कथा विचारा गुरबाणी दे कीर्तन छे पौड़िया आनंद साहिब दा जाप होया कृपा करनी पातशाह जी उस समुचियां सेवावां निभाउंदिया होया पुल चुगदी खिमा बख्शना पड़ी सुनी बाणी कथा कीर्तन गुरमत विचारां दा भाव आईयां संगतां दे हिरदे ते वसाउणा सब दियां दर हाजरियां तिर फुल पे ढावां प्रवान करनियां धर्म करो नाम दान चढ़दी कला दी दात बख्शनी परिवार में सुख शांति कारोबार में वाधे करने जेलां में बंद गुरसिखां दी रिहाई चढ़दी कला करनी अपने प्यारे खालसा पंथ की चढ़दी कला करनी इस वेले बख्शियां खजानिया विचों कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है करी पाक साल सोज पवित्रा हूं लाभ भोग हराय आप जी दा सीत प्रसाद जो छके नाम वाहिगुरु जपे श्री मुख बाग दी बख्श करो सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया आम दा नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या पई अकाल की तबे चलायो पंथ सब सिखण को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की
ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ।

उदारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भक्त जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसाय, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसाय।

प्रभु के सिमरन होए सो फला, प्रभु के सिमरन सफल फला, से सिमरहे जने आप सिमराहे नानक ताके लागो पाए। प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा, प्रभु के सिमरन उदरै मुचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु के सिमरन सबके सुझै, प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु के सिमरन मन की मल जाहे, अमृत नामृत माहे समाए।

भोजन हरस राते सुन समाध नाम रस बाते। आठ पहर जन हर हर जपा हर का भगत प्रकट नहीं शपा। हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते थरे।

न्यवलीकर्म कर आसन जैन मार्ग संयमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे तापी होमे मैल न जावे अर्के नाम संसर्ग शनाहे नार गुरमुख नाभ जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छुटै गुरु गर्भ गुमान न मंते हुटाए सोज करै दिन सर रात मन की मैल न तांते जात इस देही का भाव साधना करे मंते कभू न बिख्या ठरै जल तो वह बहुत नीत शुद्ध कावे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम मुद्रे पतत बहुमूच बहुत सियाण जमका भाव ब्यापे अनक जतन कर त्रिशन्ना द्रभै पेख अनेक अगन ने बुझै गोट भाव दुर्गे ने सज्जै छूट सनाही ऊभ पयाल मोह ब्यापे माया जाल अमर कर तूत सगली जमंडाने गोविंद भजन मंदिर नहीं माने हर का नाम जब तक जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिठावे हर हर नाम हृदय सत गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संगे हो मैं शोरे जे को जन्म मरण ते डरा साध जना की सरणी बरा जे जन को पर दर्श प्यासा नानक तांके बल बल जासा सगल पुर

मैं सुकने रे, कोई ना जाने तुम्हारा अंत, उच्चे ते उच्चा भगवंत। सगल समग्री तुम्हारा सूत्र धारी, तुम ते हुए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत में तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। सलोक देनहार प्रभ छोड़ के लागे आन सुवाए।

अपनी अमान कश बहुर शार्य ज्ञानी मंद्रोश करे, अपनी प्रतीता भी खोवा है, बहुर सुखा विश्वास न होवै। जिसकी वस्त आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मान माते, उसते चौगन करे निहार। नानक साहिब सदा दयाल, अनक भांत माया के हेत, सरपर होवत जान अनेत। बिरखी छाया सुरंग लावै, ओ बिन से मन पछतावै। जो दिसै सो चालन हाल, लपट रहो ते अंध अंधार। बटाऊ से जो लावे ने, दागु हाथ न आवे। के हे मन हर के नाम की बड़ी सुखदाई।

गोविंद भजन मिन ब्रिथे सब काम ज्यो किरपन के निरार दाम धन धन दे जन जे घट बस्यो हर नाउ नानक ताके बल बल जाओ रह तबरक शबर कमावत मन प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख न काहू भीन प्रभु देसे आप न करे आवत जावत जन्म मर जिसके अंदर बसे निरंकार जिसकी सीख तरा संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक हुन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया अप है माने अप है आप करतन बेरा किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा उपाव सियान सगल ते रहत सबका जाने आत्म की राहत जिस पावित सुलय लड़दाए थान तरंतर रया समाये।

साधुक संग सबोतन सासंग सबो सासंग सबोतन बेरा साधुक संग पाए नाम रतन साधुक संग एक पर जतन साधु की महिमा भरने कौन बरानी नानक साधु की शोभा ब्रह्मा है समानी साधुक संग अगोचर मिला साधुक संग सदा पर भुलाया साधुक संग आवे बस पंचा सासंग अमृत रस पंचा सासंग सब सासंग हुए सबकी रेन साधुक संग मनोहर बहन साधुक संग न गतहूं ताबे सासंग अस्तित मन पावे साधुक संग माया ते बिन सासंग नानक प्रभु सुप्रसन्न सासंग दुश्मन सा मीत साधु के संग महापुनीत सासंग किस्यु नहीं बैर साधुक संग न भिंगा पैर

साधु संग न कभूं थावै साधु संग सदा सुख पावै सत्संग बस अगोचर रहै साधु कै संग आजारु सह साधु संग बसे थान उचै साधु कै संग महल बहुचै साधु संग दृढ़ सब धर्म साधु संग केवल पार ब्रह्म।

ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जेक जो बसुदा कहु खुद कहु चंद्र ले ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाव नानक जो पावका सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी कह मानो प्रगा जैसे तारु भरे आकाश ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र सतर समान

सासंग पावे जन को घर कृपा अंदर उतारे पास प्रेत मुगत पात्र को उतारे सर्वरोग औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कि न पाइय धर्म नानक तस मिलाय जिस लिखिया धूर कर्म जिस गय मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास।

प्रकार जंत। कई गुड़ किए जर जीवे, कई गुड़ गिरी मेन स्वर थीवे, कई गुड़ जन जख्या किन्नर पिसाच, कई गुड़ भूत प्रेत सूकर मृगाछ। सब ते निराय सब हूते दूर, नानका आलिपत रहे आ प्रभूर। कई गुड़ पात आल के वासी, कई गुड़ नरक सुर्ग निवासी, कई गुड़ जन्म है जीवे मरहे, कई गुड़ बहो जूनी फिरे, कई गुड़ बैठत ही खाए, कई गुड़ काले थक पाए। कई गुड़ की तनमंद, कई गुड़ माया मह चिंत, जह जय भाणा तह तय राखे नानक सब कुछ प्रभु के हाथे। कई गुड़ भय बै रागी, राम नाम संग तिल निव लागी। कई गुड़ प्रभु को खो जंते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई गुड़ दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश। कई गुड़ मांगे सात संग पार ब्रह्म दिल लागा, रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन। कई गुड़ खाणी अर खंड, कई गुड़ आकाश ब्रह्मांड, कई गुट हो अवतार कई जुगत किन्नो विस्तार। कई बार बसरियो पार पासार सदा सदा एक ओंकार। कई गुड़ किन्ने बापान

मुक्त आगे सुख पावे तरमंता कर कर बावे तिरंग समान काश संग ना जावे बहु लश्कर मानुख पर कर या सप पल पितर था का हुई विनाश।

सगले ब्रतारे अनग तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर फिरे अवतार अनग जतन कर आत्म नहीं द्रव हर दरगे को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मौजते काश होए तब सुख नाही कोई।

चलत करे खिन माए पूर पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाऊं जब जब जीवे नान कर नाऊ नाम के तारे सगले जंद नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संगतरे सुन श्रवन कर कृपा से अपने नाम लाए नानक चौथे पदमे सो जनक दपाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरुख सब आए समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पात सत करड़ी निर्मल निर्मल जिसे बुझाए तिसे सपली सत नाम प्रभु का सुविधाए विश्वास सत नान गुरते पाई सत भजन साधु उपदेश सत्य जन जा कर हृदय प्रवेश सत नृत बुझे जय कोय नाम जब तागी गत हुए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सुटसो करने हार वरना बूझ करत विचार करते कि मित ना जाने किया नान ज्योत सुभावे सुवृतिया विस्मन विस्म भय

अष्टपदी। जब अकारे काशना दृष्टेता पापन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाता बैर विरोध के संकमात। जब इसका वर्ण चिन्ह जाप तब हर सो कहो किसे ब्यापत, जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहा के सुबत ब्रह्म। अपन खेला भरतीजा नान करने हार न दूजा, जब होवत प्रभ केवल तनि तब बांध मुक्त कहो किसको गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार, जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शगत कहो गित ठाए। जब आपे आप अपनी जो तरह तब कमन डर कमन कत डराए, अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन तय जन मरण कहो कहा विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा, जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपने आप आप यह चर्जा नानक अपन रूप आप यो परजा, जय निर्मल पुरख पुरख पातोता तय बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान, जय स्वरूप केवल जगदीश तय शाल क्षेत्र लगत कहो कीस। जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूख कम द्रवतावे, करण करावन करने हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कवन माए बाप मित्र सुध भाई, जय सर्व कलापे प्रवीण तय वेद कतेव कह कऊ चीन। जब अपने आप आप उतारे तो सगन अब सगन कहा बिचारे, जय अपन ऊंचा बनाव नेरा त कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गद जानो आप, जय शल छेद बे समाया ऊहा किसे ब्याप दमाया, आपस गुआ बया देश ते गुण का नाही प्रवेश। जय एक एक एक भगवंता तय कौन अचंत के सला गय चिंता, जय अपने आप आपत यारा तय कौन कथे कौन सुनने हार।

सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बंधन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आ गया तैसा कर्म पौन पाणी वह संतर माहे चार गुण दै दिशे समाहे तस्ते भिन्न को ठाऊ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ भेद पुराण सिमृत मैं देख।

सुखीय रहत साध भजन साधु सब कहत जो जो ऐ सोई सुख माने करण कराम हार पर भजान अंतर बसे बाहर भी यो ही नानक दर्शन देख सा मोही।

तारे समाये इसे हुए सो नाही बुरा उरा कह हो गने कश करा आप ला कर दूता तने किया पे जाने अपने जी की आप साज तारी सब साज ओत बोत अपन संगराज ताकि कतमित कहीं ना जाए दूसरो ऐसा सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तो सदा सुख हुए आप मिलाए लय ब्रह्म सोए ओ तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस पर सा सब जगत राय।

सर्वभंजने आदि रूप सूत आघहीने पागनादम एक पुरखे पार सर्वलायक सर्वकायक सर्वको प्रत पार सर्वगंता सर्वहंता सर्वते अनपेख सर्व सांत्र न जानही देह रूप रंग रेख परम वेद प्राण जाग कह नेत पाख तनेत

है, निरुक्त स्वरूप है, तिरमुक्त विभुक्त है, परभुक्त प्रभा है, सोजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी अनूप है, समाहतो पराज है, सदा सर्वसाज है।

तीसरे पातशाह श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज अमृतमई दात बख्श रहे हैं। सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार, किन्ना प्यारा शब्द है सज्जन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज जी कहते सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार। महाराज जी कहते वो सज्जन है जिन्हों मिलिया साडा सतगुरु नाल प्यार पै जाए। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वो सज्जन है असी दुनियावी बिरती राही एक शब्द बहुत यूज करते हैं वर्तने हैं सज्जन। ये मेरा सज्जन है मित्र है, पर मित्र कट्ठे होके करते की ने क्लब जाते ने शराब पीते ने। महाराज जी कहते जिहड़ा डोबण वाले पासे लै गया कादा मित्र है, उहदे वर्गा तां दुश्मन कोई नहीं बंदे दा। कल्ला माफ करना ये शरीर नहीं बंदे दा जांदा, बड़ियां दे रिश्ते नाते परिवार पता नहीं की जिन्हों ये शराब का नशा खा जाता है। ते जिस बंदे ने ये लत बंदे नू लाई हुंदी है, आदत बनाई हुंदी है कोल बिठा बिठा के, उन्हों बंदा कहिंदा रहिंदा है मेरा सज्जन है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते जिहड़ी जिहड़ी घर वाली बरजदी रहिंदी है गल गल ते ना पिया कर वह दुश्मन लगती है, जे प्यो वरजे वह दुश्मन लगता, मां वरजे वह दुश्मन लगती है। वास्तव च आही खेड है बस। महाराज जी कहते जे को नाओ लए बदनामी कल के लखण ही। उल्टी चलती है खेड, जे नाम लेगा बदनामी होने लग जाती है, ते सीधा चलेगा बंदा सीधी गल का लोग पुट्ठा मतलब कढ़णगे। गल बंदा किस भाव च कह रहा है किस प्रेम च कह रहा है ये नहीं मायने रखती, गल पकड़ लेनी है ते अपने अनुसार मायने कढ़ लेने उहदे ते बंदे नूं परेशान करना है। सो कई बार जिन्हों असी सज्जन समझते हैं वह साडा सज्जन नहीं हुंदा, जिन्हों दुश्मन समझते हैं वह दुश्मन नहीं हुंदा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। महाराज जी कहते आओ दसीए सज्जन कौन है,

महाराज की सेवा संगत की सेवा की बणत बनाई है। जिहड़ी जिन्नी भी सेवा असीं करदे आ इह जिहड़ा सिस्टम बनाया महाराज जी कहिंदे साडे भले लई बनाया। महाराज नूं थोड़ो लोड़ है किसी चीज़ की, कहिंदे साडे वर्गियां दा भला हुंदा रहिंदा बस उहनां दी बणाई बणतर दे नाल।

संत साजन पहे सर से सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहे अपर पूरे बिनवंत नानक तुरे श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत

उसी बीच एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सहम गुरप्रसाद जप आदि सच जगाद सच है पी सच नानक होसी भी सच एक

0: बैठा सोडी
1: पातशाह रामदास सतगुरु कहावे
0: बैठा
1: सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे
0: दिच्चे पूर्व देवना जिस दी बस से कर आवे
1: दिच्चे पूर्व देवना जिस दी बस से कर आवे
0: बैठा
1: सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे
0: बैठा
1: सोडी पातशाह रामदास सतगुरु कहावे
0: पूरन ताल खटाय अमर सर्वे ज्योत जगावे
1: पूरन ताल खटाय
0: अमर सर्वे ज्योत जगावे
1: पूरन ताल खटाय अमृत सर्वे ज्योत जगावे
0: उल्टा खेल खसम दा उल्टी गंग समुद्र समावे
1: उल्टा खेल खसम दा उल्टी गंग समुद्र समावे
0: दित्ता लईए अपना अंदित्ता के हाथ ना
1: दित्ता लईए अपना अंदित्ता के हाथ ना
0: फिर आई कर अर्जन पुत संसारी गुरु कहा
1: फिर आई कर अर्जन पुत संसारी गुरु कहा
0: जान न देसा सोडियों पुरस अजर न जरिया जावे जान न देसा सोडियों पुरस अजर न जरिया जावे कर ही की बात करे रहा
1: कर ही की बात करे रहा
0: कर ही की बात करे रहा धन धन रामदास गुरु जिन सिरिया
1: तने सवारिया पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे तारिया
0: सिखी
1: अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल था तोल तू ते अंत न पावन
0: जिनी तू से विया पाओ का
1: से तो पार तारे
0: लब लोभ
1: काम क्रोध
0: मार कड़े तो सब परवार धन तेरा थान
1: सच तेरा पैसे कारे नानक तू है ना तू है गुर अमर तू विचारिया गुडिठा तामन साधारिया
0: नानक
1: तू लहना तू है गुर अमर तू विचारिया गुडिठा तामन साधारिया
0: चारे जागे
1: चौचगी पंचाय ने आपे हो आपे ने आप साचे हो ने आपे ही थम खलो आपे पट्टी कलम आप लिखन हारा हो सब उम्मत आवन जावणी आपे ही नमा निरो तखत बैठा अर्जन गुरु सत गुरु का किवें चंदो
0: उग बांते आप क्यों चक्की की जिनी गुरु ना
1: सेवे ओ मन मुखा पया मो
0: दुनी चौनी
1: करामा सच्चे का सच्चा डो
0: चारे
1: जागे चौंजगी पंचायने आपे हो
0: चारे
1: जागे चौंजगी पंचायने आपे हो
0: चाचरी शान गोविंदे मकंदे
1: उतारे अपारे हरि अंग

0: गोविंद संग सच भोजन जोड़े प्रीत लगी हर नाम से ऐ हस्ती कोड़े राम
1: खुशियां कणी
0: त्याय मुख न मोड़े
1: ढाडी
0: दर प्रभ मंगणा दर कदे न
1: ढाडी दर प्रभ मंगणा दर
0: कदे न छोड़े
1: धन धन राम मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत तू ठाकर ऊच भगवान नानक की प्रा बेनती अपनी भगती ला धन धन मेरे प्यारे गुरु नानक देव साहब तू ही निरंकार तू सदा सलामत तू ठाकर ऊच भगवान नानक की प्रा बेनती
0: अपनी भगती ला
1: धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज धन धन बाबा नानक सिंह जी महाराज धन धन बाबा नानक कोट कोट प्रणाम कुलचक माफ तेरे चरण कमला पास बहुत बहुत धनबाद नानक नाम चढ़नी कला तेरे भाने स्वादा कला वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह उठ गई सवा मलेशी कर पूरा प्रसाद ठंका वाजिए फतेह हारे अवतार नानक गुरु गोबिंद सिंह पूर्ण गुर अवतार जगमा ज्योत विराजी अबचल लगमी यार श्री सचखंड के दरबार श्री सचखंड के दरबार जो बोले सो निहार सत श्री अकाल।